खुश कर देख वो सिंबर जज़ संतान सब पुड़ी वो सबो कातुत कौनसो राचल कोई कातुत कौनसो हरप मुंसो वादियो बोलो वादियो पहने प्रभु कोलो प्रासोलो कुश्ती कुरातु इके पाते तिग्यो सकेबु sing bakal juing juing kemandamu walau sandata keden sumbarmu nyata no sumbar weh lah dalah kerundungnya tempat jadi bayangan gue